0: வந்தே மாத்ரம்.
1: வந்தே மாத்ரம் சுஜலா சுஃபலா மலய ஜ சீதலா

फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। श्रोताओं, आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की पांचवी तिथि, तदनुसार 27 अगस्त सन 2026। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की ये सभा। आप सभी को सुप्रभात।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह की 6 बजने को हैं। अब से थोड़ी देर में दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे हिंदी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। नेपाल में कल आए भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया, महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और एक दर्जन जल विद्युत परियोजनाओं को ठप कर दिया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण हिमखंड फट जाने से ये आपदा आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं के 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत इस चुनौती के सामने नेपाल और उसके लोगों के साथ खड़ा है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है 9779851316807 और 9779701075000। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने लापता लोगों की खोज और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया है। पीपल्स आर्म्ड पुलिस की शिगाजे टुकड़ी के कुल 145 अधिकारियों और सैनिकों को आपातकालीन प्रतिक्रिया अभियानों में सहायता के लिए प्रभावित सीमा बंदरगाह पर भेजा गया है। नेपाल की यात्रा पर गए कोलकाता के 32 लोग अचानक आई बाढ़ में लापता हो गए हैं। वे मानसरोवर यात्रा के लिए एक ट्रैवल एजेंसी द्वारा आयोजित समूह में गए थे। इस समूह को कल नेपाल तिब्बत सीमा पार करनी थी, लेकिन अचानक आई बाढ़ से उनसे संपर्क टूट गया और अभी तक किसी का कोई पता नहीं चला है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से नेपाल में आई बाढ़ के बारे में बात की। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जिन सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का असर हो सकता है, वहां स्थानीय प्रशासन और राहत तथा बचाव टीमों के साथ ही राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस बारे में और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता।
1: नेपाल में बाढ़ के बाद गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार के 6 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार और करीबी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण के बगहा और वैशाली जिले के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
2: हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी DGP इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
0: इधर मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण कल दक्षिण उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा की संभावना है। कल दिल्ली में भी वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माय भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देशभर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। सरकार ने आगामी महीनों में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित

और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज की लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि आगामी महीनों में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए प्याज की उपलब्धता पर्याप्त है, क्योंकि 2025-26 के लिए प्याज का अनुमानित उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। वीर चोटरानी और विलविन सेंथिल कुमार पीएसए बुडापेस्ट क्वाश ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। ये दोनों भारतीय खिलाड़ी आज सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज पर, जिस पर आप इस वक्त सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना और आइए। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब हम आपको सुनवाते हैं गणेश वंदना अनूप जलोटा की आवाज में। इस गणेश वंदना को शब्द दिए हैं शिव कुमार सरोज ने और संगीतबद्ध किया है अमिन संगीत ने।

श्रोताओ, ये आपके अपने रेडियो सेट पर आकाशवाणी सागर एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आपका अपना पसंदीदा रेडियो चैनल जिस पर आप इस वक्त ट्यून किए हुए हैं, भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। और आइए इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाते हैं पुष्पा पगधरे की आवाज में ये भजन। इस भजन को लिखा है सरस्वती कुमार दीपक ने और संगीतबद्ध किया है सी रामचंद्र ने।

फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर, ये है आपके अपने रेडियो सेट पर, आपका अपना पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी सागर। और आइए कार्यक्रम अर्चना को आगे बढ़ाते हैं और अब हम आपको सुनवाते हैं शर्मा बंधु की आवाज में ये रचना। इस रचना को शब्द दिए हैं पंडित रामानंद शर्मा ने और संगीतबद्ध किया है शर्मा बंधु ने।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए कार्यक्रम अर्चना के अंत में अब हम आपको सुनवाते हैं चंद्रानी मुखर्जी की आवाज में यारी साहिब का लिखा हुआ और वसंत देसाई के संगीत निर्देशन में ये भजन।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:25 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं।

0: सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: कार्यक्रम आइए सुखाओ हम आपको।

अब से थोड़ी देर में यानी कि सुबह 6:30 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। इसका हम आपको 92वां भाग सुनवाएंगे। गायक स्वर होगा श्रीकांत पारगांवकर का। भूले बिसरे गीत सुनेंगे आप सुबह 6:40 पर। सुबह सुबह कार्यक्रम होगा सुबह 7 बजे से। कृषि संगीत कार्यक्रम में हमारा आज का विषय होगा देशी आम को बनाए कलमी आम। इस विषय पर हमें जानकारी देंगे श्री आरडी टोबी जी। विषय एक बार फिर सुनिएगा, देशी आम को बनाए कलमी आम। इस विषय पर हमें जानकारी देंगे विशेषज्ञ आरडी चौबे जी। मनचाहे गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:20 पर। गीत गजल और कव्वाली का कार्यक्रम संगीत सरिता होगा सुबह 7:45 पर। कार्यक्रम लोक संगीत में आप सुनेंगे कुछ बुंदेली लोकगीत सुबह 8:15 पर। सुबह 8:30 का समय होगा भोपाल केंद्र से रिले होने वाले कार्यक्रम वतन का राग का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: कार्यक्रम विवरण में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज सुबह 9 बजे मुंबई केंद्र से हम रिले करेंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। जिले की चिट्ठी आप सुनेंगे सुबह 10 बजे भोपाल केंद्र से। फोन करें लोकगीत सुने, इसका पुनः प्रसारण होगा आज सुबह 10:05 पर। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे सुबह 11 बजे। शाम 5:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम संगीत सरिता। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सदाबहार गीत। 6:45 का समय होगा कार्यक्रम लोक रंग का। और शाम 7:20 पर भी आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक रंग। शाम 7:30 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रायोजित कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। रात्रि 8 बजे का समय होगा चित्रपट संगीत कार्यक्रम का। संगीत सरिता कार्यक्रम आपके रेडियो सेट तक पहुंचेगा रात्रि 8:20 पर। और रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम मन चाहे गीत। और रात्रि 9:30 का समय होगा मुंबई केंद्र से रिले होने वाले कार्यक्रम विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम का। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से आज दिन भर प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। और इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यहीं पर संपन्न होता है।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम एंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब सुनिएगा श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। इसका हम आपको आज 92वां भाग सुनवा रहे हैं। गायक स्वर है श्रीकांत पारगांवकर का।

राजा जनक की यज्ञशाला में अपने को वीर तथा पराक्रमी समझने वाले राजे महाराजे शिव के धनुष को करोड़ों प्रकार से उठाने की चेष्टा कर असफल लज्जित हो अपने अपने स्थान पर वापस जा चुके हैं। तब 10,000 राजाओं ने एक साथ धनुष उठाने की चेष्टा की, किंतु शिव का धनुष है जिसे उठाना तो दूर, वे उसे तनिक डिगा भी नहीं सके। एक एक कर सभी वीर तथा पराक्रमी राजे महाराजे अपनी कीर्ति और वीरता गंवाकर उसी प्रकार उपहास के पात्र बन गए जैसे वैराग्य बिना सन्यासी हंसी का पात्र बन जाता है। राजा जनक के मन में संशय पैदा हुआ, क्यों उन्होंने ऐसा प्रण ठाना जिसे सुनकर न केवल द्वीप द्वीप के राजा आए वरन मनुष्य रूप धारण कर देवता तथा दैत्य भी उपस्थित तो हुए, किंतु धनुष तोड़कर सीता के हाथों जयमाल पहनने वाले को विधाता ने मानो रचा ही नहीं। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे तोड़ना तो दूर, कोई भूमि पर ही उसे हिला भी नहीं सका। जनक जी की अकुलाहट नैराश्य में परिणत हो गई। ब्रह्मा ने सीता के ललाट में विवाह शायद लिखा ही नहीं। राजा जनक के निराशा भरे वचन सुनकर उपस्थित समाज तो खिन्न हुआ, किंतु लक्ष्मण की भ्रिकुटी तन गई, होठ फड़कने लगे और क्रोध से आंखें लाल हो आईं। यदि उन्हें राम की आज्ञा मिले तो वो धरती को गेंद के समान उछालकर कच्चे घड़े की भांति फोड़ दें, फिर इस पुराने धनुष की तो बिसात ही क्या है।

अभी आप श्री रामचरितमानस का संगीत में पाठ सुन रहे थे। इसका आज हमने आपको 92वां भाग सुनवाया। गायक स्वर था श्रीकांत पाड़गांवकर का। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 6:40 हुए हैं। लीजिए अब सुनिएगा कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

0: कार्यक्रम भूले बिसरे गीत की ये पहली पेशकश अभी आपने सुनी लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को लिखा था सरताज रहमानी ने और संगीतबद्ध किया था एसडी बर्मन ने। फिल्म का नाम था चार पैसे।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया हुआ है अपना मनपसंद रेडियो चैनल आकाशवाणी सागर एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, जिस पर आप इस वक्त ट्यून किए हुए हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। और आइए, भूले बिसरे गीतों में से एक गीत हमने चुना है किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम है दिल्ली का ठग। इस गीत को मजरू ने लिखा है और संगीतबद्ध किया है रवि ने।
3: चल रे अमीरन लग तक तक पक, चल रे फकीरे जिबी चक धीरे धीरे बिड़ी बिड़ी बिड़ी बिड़ी बिड़ी बिड़ी बिड़ी बिड़ी मेरे
4: ओ बंदरिया, ओ बंदरिया अपने बंदर से झगड़ना।

कहाँ चली ओ मेरी चंपा कली, कब तलक फिरूंगा मैं इस तरह गली गली, तेरे बिना मेरे दिल की दिल में रही जाए। हाय हाय यूं शुरू हुआ है ये फसाना, हाय हाय तेरा यूं नजर चुरा के जाना, हाय हाय यूं शुरू हुआ है ये फसाना, हाय हाय।

0: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: यह आकाशवाणी का सागर केंद्र एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज पर, और लीजिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में एक और प्यारा गीत मुलजिम फिल्म से हम आपको सुनवा रहे हैं। इस गीत को मोहम्मद रफी ने आवाज दी है, शकील बदायूनी ने इसे लिखा है, रवि ने इसका संगीतबद्ध किया है और ये फिल्म 31 दिसंबर 1963 को रिलीज हुई थी बुंदेलखंड फिल्म्स के बैनर तले।

पार लगे जो सुने मेरी सरगम बम टिक बम बम बम बम टिक बम बम बम। मैं बाजे वाला बाबा ना भूत ना कोई छलावा उसी का बेड़ा पार लगे जो सुने मेरी सरगम।

और लीजिए श्रोताओं, इस कार्यक्रम के अंत में अब हम आपको सुनवाते हैं जिम्बो फिल्म में एक बार फिर आवाज मोहम्मद रफी की, गीत मजरू सुल्तानपुरी का, संगीत चित्रगुप्त का। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1958 में बसंत पिक्चर्स के बैनर तले।

0: कही है मिर्जा ओ जालिमा चला कहां।
1: और श्रोता इसी के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत यहीं पर संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब से थोड़ी देर में दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे संस्कृत में समाचार।

0: सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एक और नई सुबह के साथ कार्यक्रम सुबह सुबह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। श्रोताओ, हौसले और हिम्मत से कई मुश्किल राहों को आसान बनाया जा सकता है, बिगड़े हुए कामों को संवारा जा सकता है। जिन लोगों में बहुत कुछ अच्छा करने की जिद होती है, उनके हौसलों में बिना पंखों के गजब की उड़ान होती है। उनके लिए ना तो ऊंचाई मायने रखती है और ना ही गहराई, क्योंकि उनकी हिम्मत और हौसले के आगे ये सब बौने हो जाते हैं। बस जिद ही इंसान में हिम्मत और ताकत को बढ़ावा देती है। लाख मुश्किलें आए, राह में कितनी ही ऊंचे नीचे पड़ाव आए, हिम्मती लोग प्रत्येक बाधा को समझदारी और संयम के साथ अपने आप के हौसले के बल पर मंजिल को पा ही लेते हैं। जिंदगी में सभी के साथ कोई ना कोई परेशानी जरूर होती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो परेशानियों और समस्याओं से ना घिरा हो, और देखा जाए तो परेशानियां हमें जीवन की एक अलग ही अनुभूति का एहसास दिलाती हैं। इसमें कहीं ना कहीं आनंद की किरण छिपी होती है। उदाहरण के तौर पर, जब हम किसी मुश्किल या परेशानी पर विजय पा लेते हैं तो मन को ऐसी तसल्ली का एहसास होता है जैसे कि हमने सारी दुनिया को पा लिया हो। उस समय हमें आनंद की अनुभूति होती है। सोचिए, यदि हमारे जीवन में दुख या परेशानी ना हो तो फिर हम इनके एहसास के बिना सुख के आनंद की अनुभूति कैसे कर पाएंगे। अर्थात प्रतिकूल परिस्थितियों के बिना अनुकूलता हमें कैसे समझ में आ सकती है। रात के बाद दिन, अंधेरे के बाद उजाला, हमें यह बताता है कि इन दोनों में फर्क क्या है। अगर उजाला ही उजाला होगा या फिर अंधेरा ही अंधेरा होगा तो हमें इनमें फर्क ही समझ में नहीं आएगा। इसलिए दुखों, गमों और परेशानियों को बहुत बड़ी आफत ना मानकर, केवल एक अवस्था मानकर, कुछ दिनों की त्रासदी मानकर इनसे हौसलों के साथ लड़ा जाए तो ये सब अपने आप ही खत्म हो जाएंगी और जीवन में सरलता आ जाएगी। आप अपने जीवन में हर बार असफल हो ऐसा नहीं हो सकता। यदि आप अपनी असफलताओं के कारणों पर सूक्ष्मता से विचार करके उनको दूर करने की हिम्मत करेंगे तो आप एक दिन जरूर सफल होंगे। कभी कभी हमें कोई काम शुरुआत में बहुत कठिन महसूस होता है, मगर जब हम उसे करने की मन में ठान लेते हैं तो धीरे धीरे उसे करने की हम में हिम्मत, ताकत और हौसला आ जाता है और उस काम में हमारी दिलचस्पी भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। और जहां ये लगाव अपने काम के प्रति हम में पैदा हो जाता है तो आगे का रास्ता हमें आसान से और आसान होता हुआ नजर आता है।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
0: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मणप्पुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सुबह। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम एंड 102.6 MHz पर। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिएगा कार्यक्रम कृषि संकेत। इसमें हमारा आज का विषय है, देशी आम को बनाए कलमी आम। इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे हैं विशेषज्ञ आरडी चौबे जी।
3: हम आज आपको एक ऐसी विधा बताने जा रहे हैं जिसमें आप खुद ही अपने घर पर, यदि आपके पास कलमी पौधे एक या दो पूर्व से मौजूद हैं, तो आप अपने देसी पौधों को कलमी पौधों से मुकुट रोपण विधि से या क्राउन ग्राफ्टिंग माध्यम से आप उसको कलमी पौधों में कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें एक

0: बीएम है, वो ना कटे सिर्फ खाल उसकी निकले, और खाल फटे ना उसी के बीच में हम उसको कलम लेके टी ग्राफ्टिंग में टी आकार की या हम आई आकार का वो बना के उसमें कलम जो है फंसा देते हैं, और दोनों को हम एक पॉलिथीन की टेप से मजबूत तरीके से उसको बांध देते ताकि उसमें पानी ना जाए। ये करने का सबसे उपयुक्त समय इस समय चल रहा है जब हमारी आर्द्रता भी वातावरण में काफी है। ये तो छोटे पौधों की बात हुई, यदि हम बड़े पौधों में 8-9-10 साल के पौधों में यदि हम देसी पौधे हैं उनको कलमी बनाना चाहते हैं तो 4 फीट ऊपर तक पूरा पौधा हमें काट देना होगा। 4 फुट इसलिए ताकि उसमें कोई बकरियां या कोई जानवर उसको जो है इस तरह से नुकसान ना पहुंचा सके। उसके लिए हमें आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होगी, सबसे पहले राल, मोम और तेल, ये तीनों सामग्री, और थोड़ी सी सुतली की हमें आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हमें करना ये होगा कि जिस जगह पौधे में हमें देसी पौधे को कलमी बनाना है उसमें भी हमें सांकोर डाली यानी जो ग्राफ्ट स्टिक या बड़ स्टिक बोलते हैं उसको 7 दिन पहले उसकी पत्तियां काट के कम से कम पेंसिल के आकार की मोटाई की ये कलमी आम के पौधे से हमें काट के 7 से 8 कलमें या 4 कलमें जो भी आप लगाना चाहते हैं, यदि एक पौधे में आप 4 से 5 प्रकार के आम लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको 4-5 प्रकार के पौधों में कलमें बनानी होंगी। कलमें बनाने के लिए साधारण सा उपाय है, आप सिकेटियर से उसकी पत्तियां जो है वो कट कर दें नीचे से और 7 दिन बाद उनको निकाल के लेके आएं, और जो हमारी जो देसी किस्म का हमने आम का पौधा काटा है उसको काटना तब है जब हमारी कलम तैयार हो जाए। उसमें चारों तरफ हम तेज धार वाले चाकू से जो आम की मोटी खाल है उसको ऐसा निकालेंगे ताकि उसमें लकड़ी में न लगे उसके या गेमियम में न लगे, और उस कलम को थोड़ा छीलते हुए इसमें हमने कटिंग की है उसकी या काटा है उस हिस्से को उसमें फंसा दें। इसी तरह से एक पौधे में हम 4-5 कलमें या 6 कलमें जो भी आप लगाना चाहते हैं सभी को इस तरह से छील के चारों तरफ से उसमें खाल निकाल के उसमें फंसाते जाएं, और इसके बाद हमें पूरी उसमें प्रक्रिया में ये सुतली से लपेटते हुए पूरा पैक कर देना है उसको, और राल, मोम और तेल को गर्म करके उसमें उसके आसपास पूरा पैक कर दें ताकि उन कलमों में पानी न जाए। इस विधि से आप देखेंगे कि हमारे जो देसी पौधे हैं वो कुछ ही दिनों बाद उनमें से पत्तियां निकलना शुरू होंगी और आपका जो देसी पौधा है बड़ी आसान विधि से ये कलमी पौधे में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह से जो हमारा 2 से 3 साल का पौधा है उसमें जब हमारी कलम में से यदि पत्तियां निकलना शुरू होती हैं जो देसी पौधा है तो कलम के ऊपर से हम उसको काट देते हैं पूरी तरह से ताकि जो हमारा कलमी भाग का पौधा जो है वो आसानी से बढ़ सके, और इस तरह से हम अपने ही घर में बड़ी सुरक्षित विधि से और संक्षिप्त विधि से बगैर ज़्यादा खर्च किए हम देसी पौधों को कलमी में बना सकते हैं। बाजार में हमारे जो कलमी पौधों की कीमत है 50 से 60 रुपये 80 रुपये तक है, और यदि हम चाहें तो इस तरह से हम 10 या 20 रुपये के खर्च पर अपने घर पर ही कलमी आम का पौधा तैयार कर सकते हैं।
1: देसी आम को बनाए कलमी आम, इस विषय पर अभी हमें जानकारी दे रहे थे श्री आरडी चौबे जी। यह आपके अपने रेडियो सेट पर आकाशवाणी सागर एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आपको बताना चाहेंगे इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:10 होने को हैं। अब से थोड़ी देर में भोपाल केंद्र से हम रिले करेंगे प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय खेल दिवस पर आज प्रदेश के 24 स्थानों पर खेल इंडिया संवाद कार्यक्रम। प्रधानमंत्री खिलाड़ियों और युवाओं से करेंगे संवाद। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत और 750 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर। भारत ने राहत सामग्री और दवाओं की 10 टन खेप भेजी। रक्षा मंत्री

0: राजनाथ सिंह आज जबलपुर की बीकर फैक्ट्री में T-72 टैंकों के ओवरहाल की 600 करोड़ रुपए की परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भील के मालनपुर में गोदरेज की नई विनिर्माण इकाई का किया शुभारंभ। 450 करोड़ रुपए के निवेश से 600 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। और प्रदेश में मानसून सक्रिय, दतिया में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आज खेल इंडिया संवाद खेल की बात पीएम के साथ कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश के 24 स्थानों पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11:45 पर खिलाड़ियों, युवाओं और खेल प्रतिभाओं से संवाद करेंगे। भोपाल सहित प्रदेश के विभिन्न शहरों के शैक्षणिक संस्थानों में होने वाले इन कार्यक्रमों में सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। हरदा, बड़वानी और छतरपुर में केंद्रीय मंत्री भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रमों में विद्यार्थियों और खिलाड़ियों की सहभागिता के साथ खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। कल मध्य नेपाल में आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और एक दर्जन जल विद्युत परियोजनाओं को ठप कर दिया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया है कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण हिमखंड फट जाने से आपदा आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नेपाली समकक्ष बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं की 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है, जिसमें अस्थायी आश्रय, कंबल, स्वच्छता किट और सौर लैंप शामिल हैं। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है 9779851316807 और 9779709107500। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने भी सहायता के लिए टोल फ्री आपातकालीन नंबर 1234, हॉटलाइन 1144 और पर्यटक पुलिस नंबर 9851289445 सहित इसी तरह के नंबर जारी किए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी नेपाल में हुई जनहानि पर संवेदना व्यक्त की है। ओमकारेश्वर में एकात्म धाम स्थित पंचायतन मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सुबह संतों और विशिष्ट अतिथियों के साथ 45 पवित्र शिलाओं का पूजन कर मंदिर निर्माण का शुभारंभ करेंगे। वैदिक अनुष्ठान के बीच हो रहे इस आयोजन में संत मंडल और विभिन्न पीठों के आचार्य शामिल हैं। पंचायतन मंदिर में भगवान शिव मुख्य देवता होंगे, जबकि भगवान विष्णु, सूर्य, गणेश और भगवती शक्ति के उपदेवालय होंगे। आयोजन के माध्यम से आदि शंकराचार्य के समन्वय और एकात्मता की परंपरा को आगे बढ़ाने का देंगे। प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में कल राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने विधानसभा से पारित समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब विधि और विधायी विभाग इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजेगा। विधानसभा ने यह विधेयक 21 जुलाई को पारित किया था। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद विधेयक को राजपत्र में अधिसूचित कर इसके प्रावधान प्रदेश में प्रभावी किए जा सकेंगे। प्रस्तावित कानून में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों के लिए समान कानूनी व्यवस्था का प्रावधान है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जबलपुर स्थित व्हीकल फैक्ट्री में T-72 टैंकों के ओवरहाल की करीब 600 करोड़ रुपए की परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के भी कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू हो रही इस परियोजना में T-72 टैंकों के रखरखाव, मरम्मत और तकनीकी उन्नयन के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा। इसे सेना के बख्तर बंद बेड़े की परिचालन क्षमता मजबूत होने की उम्मीद है। भिंड जिले के मालनपुर में कल गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की चौथी नवीन एकीकृत विनिर्माण

0: का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुभारंभ किया। करीब 450 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश से स्थापित इस इकाई से 600 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश क्षमता मूर्त रूप ले रही है।
1: बीते समय जो जीआईएस के माध्यम से भोपाल में 30 लाख करोड़ के निवेश के एमओयू हुए, एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है आमतौर पर जितने एमओयू होते हैं उसके 10% ही नीचे उतरते हैं। यहाँ 30% से ज्यादा निवेश धरातल पे उतरा, 10 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे राज्य के अंदर अलग अलग प्रकार से मूर्त रूप ले रहा है। कई तो अपने उत्पादन प्रारंभ करके अपनी पूरी क्षमता से रोजगार देते हुए देश और दुनिया के सामने अपने उत्पाद को पहुंचा रहे हैं।
0: रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए प्रदेश में खाद्य सुरक्षा प्रशासन की कार्रवाई जारी है। इंदौर में गुजरात से आई करीब 350 किलोग्राम मिठाई जब्त की गई है। खाद्य सुरक्षा टीम ने एक दुकान से मिठाई के 4 नमूने लिए। वहीं जबलपुर के पाटन में प्रतिबंधित एनालॉग मिल्क केक के करीब 40 किलोग्राम स्टॉक को जब्त किया गया और 5 मिठाई तथा खोआ दुकानों से 7 नमूने लिए गए। सभी नमूने जाँच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय बना हुआ है। प्रदेश में अब तक औसतन 25.5 इंच बारिश हो चुकी है। हालांकि बारिश अब भी सामान्य से 11% कम है। मौसम विभाग ने आज दतिया में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजगढ़, ग्वालियर, भिंड, रीवा, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में भी भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं रीवा में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जल भराव प्रभावित गायत्री नगर का जायजा लिया और 9 लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू कराया। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार जिले में परिवहन विभाग द्वारा विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। त्योहारों को ध्यान में रखते हुए आगरमालवा खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा कल टीम ने 4 प्रतिष्ठित मिष्ठान दुकानों से नमूने लेकर जांच हेतु राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा है। सतना जिले में जल जनित और संक्रामक रोगों के संभावित फैलाव को देखते हुए कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। झाबुआ में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत राणापुर विकासखंड में आज आयोजित होने वाला जन विश्वास शिविर अब 29 अगस्त को होगा। वहीं मुरैना के बामोर में आज प्रस्तावित जन विश्वास कैंप अब 29 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। आमजन को बेहतर आधार सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मंदसौर नीमच डाकघर संभाग द्वारा 29 अगस्त को सेवा केंद्रों पर विशेष अभियान आयोजित किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

श्रोताओ, ये आपके अपने रेडियो सेट पर आपका अपना पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी सागर FM बैंड 102.6 MHz पर। हम आपको बता दें, समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:20 हुए हैं। लीजिए, अब आपकी खिदमत में पेश है श्रोताओं के फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत।

0: कार्यक्रम मंचाही गीत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में अभी आपने ये जो गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम था छोटी बहन। इस गीत को लिखा था शैलेंद्र ने, संगीतबद्ध किया था शंकर जयकिशन ने और अनुरोधकर्ता आप सभी लोग थे। ये हमें पत्र मिला है कंवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, आदिति शिवानी और मीनूरा श्रीमाली और धर्मश्री, मंगलधाम कॉलोनी सागर मध्य प्रदेश से श्याम रेखवार, विक्रम बादल, विनय, लक्ष्मी, खुशबू, वंदना, विराज, दक्ष, कीर्तिका टक्कू और भूमिका रेखवार। ये पत्र हमें प्राप्त हुआ है ज्योतिर्लिंग रेडियो श्रोता संघ यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार, जितेंद्र फूलवाले और मालाकार परिवार। और साथ ही आपको हम बता दें कि आकाशवाणी का सागर केंद्र FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पर, जिस पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मनचाहे गीत।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: ये आपका अपना पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी सागर FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। साथ ही साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि आप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी अपने मोबाइल पर आकाशवाणी सागर का लाइव प्रसारण सुन रहे हैं, जिस पर आप इस वक्त ट्यून किए हुए कार्यक्रम मनचाहे गीत। और आइए मनचाहे गीत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनिए ये गीत, और उसके बाद हम आपको बताएंगे इस गीत को किन लोगों ने पसंद किया था। लेकिन इस गीत के बाद
3: सुनो।

0: कभी दोनों हंसते हैं कभी दोनों रोते हैं।
1: श्रोताओं आप समझ ही गए होंगे फिल्म का नाम। जी हाँ, फिल्म का नाम प्रेम कहानी, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। इस गीत को लफ्ज दिए थे आनंद बख्शी ने और इसकी तर्ज बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और पसंद करने वालों के नाम भी सुन लीजिएगा। ये हमें पत्र मिला है रेंगिनी छत्तीसगढ़ से, दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। साथ ही ये पत्र है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से, मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। और दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल और रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार। साथ ही हमें कुछ व्हाट्सएप भी मिले हैं, संबलपुर कांकेर से फागूराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, दीवाना रेडियो श्रोता लिसनर क्लब जमानिया शाजीपुर मध्य प्रदेश से, सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल और साथी गांव लोड गढ़ ठाकुरावाला से, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह।

0: राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अभी राज सिंह, मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से, जगदीश धाकड़, नए नयमा श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़।
1: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
0: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर, ये आपके अपने रेडियो सेट पर आपका अपना पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी सागर। आइए मनचाहे गीत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम आपको रोमांस फिल्म में सुनवाते हैं लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजें। आनंद बख्शी के बोल हैं, आरडी बर्मन का ये संगीत है और अनुरोधकर्ता आप सभी लोग हैं। ये पत्र हमें मिला है लक्ष्मीपुरा चोपड़ा के सामने सागर मध्य प्रदेश से, श्रीमती केशव श्रीवात्री, हेमंत, योगेश, कैलाश, निशा, सुनीता, विनीता, अभय, आभा, अनिमेश, आयुष और पूरा श्रीवात्री परिवार। साथ ही ये पत्र में मिला है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराज जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से। और साथ ही छत्रपति संभाजी नगर से ये पत्र हमें इस गीत के लिए मिला है, राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: आप अपने रेडियो सेट पर सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर FM 102.6 MHz पर। लीजिए, इस कार्यक्रम के अंत में अब हम आपको सुनवाते हैं साथी फिल्म में अनुराधा पौडवाल की आवाज, नवाब आरजू के ये बोल हैं और नदीम श्रवण का ये संगीत है। और अनुरोध करता आप सभी लोग हैं, नेपाल पहले सागर मध्य प्रदेश से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका रॉबिन, और ये पत्र आदर्श नगर मालोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा, साइना शर्मा, निवान शर्मा, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा।

और श्रोता इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम मंचाए गीत यहीं पर संपन्न होता है। हम आपको बता दें आज का ये फरमाइशी फिल्मी गीतों का सफर आपने तय किया अपने रेडियो मित्र मासूम आलम के साथ।

ये आपके अपने रेडियो सेट पर आकाशवाणी सागर एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर लीजिए। अब सुनिएगा कार्यक्रम संगीत सरिता।

0: उसको दे दो।
1: कार्यक्रम संगीत संगीता की ये पहली पेशकश यूसुफ आजाद कव्वाल और उनके हमनवाओं की आवाजों में ये कव्वाली थी। इस कव्वाली को लिखा था नैरंग संभाली ने और इस कव्वाली को संगीतबद्ध किया था खुद यूसुफ आजाद कव्वाल ने।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
1: यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, जिस पर आप इस वक्त आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम संगीत सरिता का।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, ये आपके अपने रेडियो सेट पर आपका अपना पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी सागर। और आपको बता दें न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी आप हमारा आकाशवाणी सागर का लाइव प्रसारण सुन रहे हैं। और आइए कार्यक्रम संगीत सरिता में अब हम आपको सुनवाते हैं छोटे मजीद शोला और उनके हम नवाओं की आवाजों में ये कव्वाली। इस कव्वाली को लिखा है अनवर फरोखाबादी ने और संगीतबद्ध किया है कल्याण सेन और राजू खान ने।

और श्रोता, इसी कव्वाली के साथ कार्यक्रम संगीत सरिता यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी के हम सागर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। हम आपको बताना चाहेंगे इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने को हैं। अब से थोड़ी देर में दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे समाचार प्रभात।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।

यूपीआई ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे, और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा

0: शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
1: UPI के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत, 133 भारतीयों सहित 750 से अधिक लोग लापता। नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू की। अमेरिका ने विश्व स्तर पर वीजा आवेदनों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। सोशल मीडिया कंपनी मेटा अपने प्लेटफॉर्मों पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के दावों के निपटारे के लिए 18 अरब डॉलर तक का भुगतान करेगी। और क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के साथ टेस्ट श्रृंखला जीतने की ओर। अब समाचार विस्तार से। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों सहित 750 से अधिक लोग लापता है। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ली गई और कई पनबिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया। एक रिपोर्ट।
3: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण ग्लेशियर फट जाने से यह आपदा आई। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि नेपाल तिब्बत सीमा पर हेन्दी नदी में भूस्खलन और जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ रसुवा जिले के तिमोरे शहर में भोटे कोशी के रास्ते त्रिशूली नदी में प्रवेश कर गई। इसके बाद बाढ़ ने नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहू और नवलपरासी पूर्वी जैसे अन्य जिलों को चपेट में ले लिया और बाढ़ का पानी राजधानी काठमांडू से लगभग 200 किलोमीटर तक फैल गया। चीन के सरकारी चैनल ने बताया कि चीन की सीमा पर 3 लोगों की मौत हो गई है और 265 लोग लापता हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। इनमें से 30 लोगों का काठमांडू के त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल में इलाज चल रहा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं की 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है, जिसमें अस्थायी आश्रय, कंबल, स्वच्छता किट और सौर लैंप शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत इस आपदा में नेपाल और उसके लोगों के साथ है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। नंबर है 9779851316807 और 9779709107500। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने लापता लोगों की तलाश और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया है। पेचिंग में भारतीय दूतावास ने भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 00861852408405। इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क किया जा सकता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के 50 भारतीय तीर्थयात्री भी लापता लोगों में शामिल हैं। अब तक विनाशकारी बाढ़ के बाद कोलकाता और पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों से 36 लोग लापता बताए जा रहे हैं। विश्व बैंक ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को आपात वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। वहीं नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। बिहार सरकार ने नेपाल में भयावह बाढ़ और गंडक नदी के जलस्तर में संभावित वृद्धि को देखते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली सहित गंडक नदी के किनारे बसे जिलों के लोगों को सतर्क रहने को कहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर स्थित गंडक

बैराज में नदी का जलस्तर लगातार कम हो रहा है। आज सुबह बैराज से करीब 80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो कल रात दर्ज किए गए 150,000 क्यूसेक डिस्चार्ज का लगभग आधा है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है।

0: है कि हाई अलर्ट को देखते हुए एक उच्च स्तरीय टीम भी गठित की गई है।
1: हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है, चीफ सेक्रेटरी डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं, जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी बाल्मीकिनगर जाऊंगा।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल में फंसे लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 शुरू कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित परिवार इस हेल्पलाइन के माध्यम से तुरंत जानकारी साझा कर सकते हैं।
2: उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार अगर राज्य का कोई भी नागरिक नेपाल में फंसा है या उसे किसी भी तरह की मदद की जरूरत है तो उनके परिवार वाले तुरंत 1070 पर संपर्क कर सकते हैं। राज्य सरकार ने नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने और उन्हें तुरंत मदद पहुंचाने के लिए दूतावास स्तर पर संपर्क शुरू कर दिया है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। गंडक और नारायणी नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
3: यह संवाद युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से जुड़ने का सीधा माध्यम प्रदान करेगा, साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि उनके विचार और दृष्टिकोण भारत के युवा और खेल पारिस्थितिकी तंत्र पर चल रही चर्चा का हिस्सा बने। इसकी प्रमुख विशेषता युवाओं और अग्रणी भारतीय एथलीटों और पदक विजेताओं के बीच सीधा संवाद है। कार्यक्रम का एक केंद्रीय पहलू युवा संवाद होगा। इसमें युवा प्रतिभागियों को अपने विचार, दृष्टिकोण और आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यह संवाद 5 विषयों पर आधारित होगा, जिनमें खेल, ओलंपिक आकांक्षाएं, युवा नेतृत्व, विकसित भारत और नशा मुक्त युवा शामिल हैं। खेलो इंडिया संवाद का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ, अनुशासित और खेल प्रिय राष्ट्र निर्माण के दृष्टिकोण के अनुरूप किया जा रहा है। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू कर दी है। मंत्रालय ने बताया है कि प्याज को 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि आगामी महीनों में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए प्याज की उपलब्धता पर्याप्त है, क्योंकि 2025-26 के लिए प्याज का अनुमानित उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। मंत्रालय ने बताया कि उत्पादन की अनुकूल संभावना को देखते हुए सरकार ने 2026-27 के दौरान मूल्य स्थिरीकरण कोष बफर के लिए रबी प्याज की 2 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। खरीद प्रक्रिया 15 मई से शुरू हुई और बफर के लिए लगभग 1,21,000 मीट्रिक टन प्याज की खरीद की जा चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि पहली कांदा एक्सप्रेस नासिक से रवाना हो चुकी है। आनंद और सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: अमरीकी प्रशासन ने दुनिया भर के सभी अप्रवासी वीजा आवेदनों पर रोक लगा दी है। ये कदम अमरीकी विदेश विभाग द्वारा उन आवेदकों पर प्रतिबंध कड़ा करने और उनकी पहुंच सीमित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जो योग्य अमरीकियों के लिए आरक्षित सार्वजनिक लाभों पर निर्भर हो सकते हैं। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने 18 अरब अमरीकी डॉलर का भुगतान करने और अपने फेसबुक तथा इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा के लिए और भी कड़े उपाय करने पर सहमति जताई है। एक रिपोर्ट।
5: अदालत की मंजूरी मिलने पर यह समझौता मेटा के खिलाफ राज्यों की ओर से दायर मुकदमों को रोक देगा। मेटा ने कहा है कि किशोरों को अपने प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित और उपयोगी अनुभव प्रदान करना कंपनी के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेटा ने प्रतिद्वंदी टिकटॉक और यूट्यूब से भी इसी तरह के सुरक्षा उपाय अपनाने का आग्रह किया। यह समझौता कैलिफोर्निया, कोलोराडो, केंटकी और न्यू जर्सी से जुड़े एक अदालती मामले का निपटारा करेगा, जो 2023 में मेटा पर मुकदमा दर्ज करने वाले 29 राज्यों में शामिल थे। मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि मेटा ने बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म की लत लगाने वाले फीचर्स जानबूझकर डिजाइन किए और इसके बारे में लोगों से जानकारी छिपाई, जिससे युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य के विकार पैदा हुए। मामले में यह भी आरोप लगाया गया कि मेटा ने माता पिता की सहमति के बिना 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का डेटा नियमित रूप से एकत्रित करके संघीय कानूनों का उल्लंघन किया। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को पहली पारी में कम स्कोर पर ऑल आउट करके और फॉलो ऑन देकर दूसरे और अंतिम टेस्ट पर

0: अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। कल चौथे दिन खेल समाप्त होने तक श्रीलंका ने 6 विकेट पर 229 रन बनाए थे। श्रीलंका के पासेंदु सूर्या बंडारा ने 92 रन बनाए। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद प्रियंका। नेपाल में जल प्रलय से मची तबाही को आज जनसत्ता और हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, नेपाल में केदारनाथ जैसी त्रासदी, ग्लेशियर से 2000 फीट का टुकड़ा गिरने से झील बनी, टूटते ही सैलाब। अमर उजाला की सुर्खी है, दो नए सैन्य संपर्क बनाएंगे भारत और चीन। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की भारत यात्रा से पहले विशेष प्रतिनिधियों के बीच दो हॉटलाइन पर बनी सहमति, 8 बिंदुओं से सुलझाएंगे सीमा विवाद। दहेज मामलों में अब तारीख पर तारीख नहीं। नवभारत टाइम्स ने बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज के मामले प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। सरकार की सख्ती के बाद गिरने लगे चीनी के भाव। दैनिक जागरण ने लिखा है, सप्ताह भर में चीनी के मूल्य में 12 से 15 रुपए की कमी, कुछ दिनों में और गिरावट का अनुमान। दैनिक भास्कर की ये खबर ध्यान खींचती है, फोर्ब्स एशिया 100 टू वॉच सूची में सबसे ज्यादा 19 स्टार्टअप के साथ भारत शीर्ष पर। स्वदेशी पावर चिप से लेकर सीधे कैंसर सेल्स तक दवा पहुंचाने के इनोवेशन कर रही ये कंपनियां। राजस्थान पत्रिका ने ध्वनि प्रदूषण शीर्षक से लिखा है, ट्रैफिक की कर्कश आवाज तले दबी पक्षियों की मीठी चहचहाट, इंसानों को अब पूरा नहीं मिल पा रहा तनाव मिटाने वाला नेचुरल टॉनिक।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत, 133 भारतीयों सहित 750 से अधिक लोग लापता। नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू की। अमेरिका ने विश्व स्तर पर वीजा आवेदनों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। सोशल मीडिया कंपनी मेटा अपने प्लेटफॉर्मों पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के दावों के निपटारे के लिए 18 अरब डॉलर तक का भुगतान करेगी। और क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के साथ टेस्ट श्रृंखला जीतने की ओर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: श्रोताओ, इस वक्त आप अपने रेडियो सेट के स्केल पर 102.6 मेगाहर्ट्ज पर ट्यून किए हुए हैं आकाशवाणी सागर। हम आपको बताना चाहेंगे, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:15 हुए हैं। लीजिए, अब आपकी सेवा में प्रस्तुत है बुंदेली लोक गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत, लेकिन इस अंतराल के बाद।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: लीजिए श्रोताओ, कार्यक्रम लोक संगीत में हम आपको सबसे पहले सुनवाते हैं द्रौपदी यादव और उनके संगीत साथियों की आवाजों में ये झूला गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओ, ये है आपका अपना पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी सागर एफ एम 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, जिस तरह आप इस वक्त सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। और आइए इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाते हैं ये आला गीत। इसे आवाजें दी हैं बच्चा सिंह और उनके संगीत साथियों ने।
3: देखन गई थी ब्रज कुंजन अनोखी आज, आज बाहर वीर सामन समैया की, ते ही छन सौ छबीली छैल छाको छवे और छतियाँ छुअन चाहे मन मदमाही है। भानत बिहारी ललचाय ओ नचाय नैन, नासा मोर कहत झकोर झटवाही है। नाही ओह नाही।

श्रावण महीना वा बारो सोहावन या घर घर होत है तीज त्योहार को सखिया रे झूला झूले को सखिया वा झूला झूले को गावे मंगला छियार पहुआ है समैया व दुश्मन बनी है या रैयत रुआवे महोबा के अरे बेंदला के चढ़वैया अरे बेंदला के राम चढ़वैया रे दुर्गत दे।

दुलारे तो है पालो परमाल बीच आज चीर जात दाऊ धीर तो बंधाए जा परम है निगायो तो गोद में खिलायो लाल अब बाला बिलखाती आज लाज तो बचाए जा एरे बन्ना पर बनयाओ बन मारी बेग अहोत बेदा चंद्रावल निंग तो चुकाए।

अरे कन्हैया बन के आए जा, तुम वीर बेंद ला के चढ़वैया जब ना हर के सुना बयान। उतरत बांधी चलिया वी जब उतल के परी नेंगाए, चौधर ललका रो है ना हर नयो बांधी से दिया जवाब। बांधी जल्दी बता दे हिरिया बरैनी और जाके महलन माँ कह दे सुनाए कि पाँच मुहूर्त पे बैरागिन की, पाँच मुहूर्त पे बैरागिन की ठाढ़ी है तोरे के लेके द्वार। और जाके कह देना कि वही भिक्षा लेकर के आवे और कोई ना जाए तो बांदी ने दिन हो जवाब। जाके पहुंची है महलन मा और हिरिया से लागी बतान कि मालकन पांच महात्मा पैसे आए तजन का रूप न भरनो ये आए। कोई मानो चोला हमें लगे ना कोई गंधर्व क्यारे आवता, गीत वाय गे इंद्रासन से की कहे आए फोर पताल। दर्शन कर ले महापुरुषन के तो कटरा तोर अमर हुई आए, मगर कहा है उन्होंने कि हिरिया लेकर के आवे दक्षिणा और कोई चेरी बांधी नहीं आवे। जब हिरिया मनमा करती बेचार ऐसा लागत है आज महोबा माँ, ऐसा लागत है आज महोबा माँ मारो आगा बना पर राव हो जे कजलिया पे गर्म महोबा के, कजलिया पे गर्म महोबा के या त्योहार महोबा किया। जब बांदी से दिया जवाब कि जल्दी चली जा दरवाजे का उन्हें बारा दरी मा लिया बोलाए, लौटी बांधी वही समय आम अब बावन का ले गए लेवाए। बारा दरी के अब जागा मा वही बावन का दिन बैठाए और हिरिया सोचा थी मानिया अपने मा। हा हिरिया सोचे मन अपने मा दिल अपने मा कर थी विचार ऐसा ना हो आएगा हो उदल तो ताना मारे बहादुर महुआ माँ। नाहर कहे उतर चढ़वाद मुइलो ठबरी अगर महोबा के, मुइलो ठबरी अगर महोबा के रे महुआ माठा भाव बेकार। ऐसे बांदी का ललकारे बांदी मेरे सामने आओ पटा डार दे चंदन का मैं गंगा के करूं स्नान। कौनो बांदी पान दान ले और कौनो पीक दान ले हाथ, कौनो लहे बेजनिया फूल मती के को मुहिया मा ढोरती बयार, केसरी और कस्तूरी लेके तो मालस हुए बदन माल लाग। हनुमान करके गंगा जल की धोती बदल बना रसवाल, क्या छ वर्ण क्या छ वर्ण जिनका रूप न भरनो लिया। सजे सजा एका को साजे जिनका साज दीन भगवान, चार चतुष्पद चार खग और चार फूल फल चार।

कमल शेखर चरण उंगली कुसुम रंग चंपा वरण तन जंगहा जग जैन एड़ी नारंगी से उरोज श्री फल से बिंबा से अधर दंत दामिन बेजन है। कीर कैसी नासका अवली कैसे केस खंजन कैसी चपलता कपोल कंठ गहन है।

0: सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी की महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार तक, समय होता है सुबह 11 से 11:30 तक।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: और श्रोता, इसी के साथ कार्यक्रम लोक संगीत यहीं पर संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 8:30 होने को है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज के साथ डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।
1: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि आचार्य शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 9 अगस्त। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण चौहान और दिल्ली से नरेंद्र देव पांडे। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
2: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
3: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
2: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
3: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
2: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार

भी कहानी है जो गांव की पगडंडियों से उठे, जिन्होंने अत्याचार के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। अंग्रेजी सत्ता की आंखों में आंखें डाल वो चलते रहे, आगे बढ़ते रहे और अपने प्राण न्योछावर कर दिए, क्योंकि उनका एकमात्र स्वप्न था स्वाधीन भारत। एक ऐसे ही महान देशभक्त थे गुलाब सिंह लोधी। वो जानते थे कि अंग्रेजी सत्ता के सामने खड़ा होना आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी जाना था कि डर कर जीने से बेहतर है देश के लिए निर्भय होकर मर जाना। उनका जीवन असाधारण साहस का प्रतीक है, जो बताता है कि स्वाधीनता की मशाल यूं ही नहीं जली। ये मशाल एक हाथ से दूसरे हाथ तक पहुंची। किसी ने लोगों को जगाया, किसी ने अपने कदमों से रास्ता बनाया और किसी ने अपने रक्त से उसकी लौ को जलाए रखा। वीर गुलाब सिंह लोधी का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के फतेहपुर चौरासी क्षेत्र के चंडिका खेड़ा नामक गांव में हुआ था। उनके पिता ठाकुर राम रतन सिंह लोधी एक किसान थे। वो धर्मनिष्ठ तथा अत्यंत स्वाभिमानी थे तथा कड़ी मेहनत से अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। उन्होंने अपने पुत्र के भीतर निडरता, सत्यनिष्ठा और राष्ट्र प्रेम के संस्कार डाले। जिस उन्नाव की धरती में उनकी परवरिश हुई, वो भूमि बैसवाड़ा की गौरवशाली इतिहास और 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के अमर नायक राजा राव राम बख्श सिंह की शौर्य गाथा से स्पंदित रहती थी। ऐसे वातावरण में पलने के कारण बालक गुलाब सिंह लोधी के मन में देश प्रेम के भाव प्रस्फुटित हो चुके थे।

औपनिवेशिक भारत के अभावग्रस्त ग्रामीण परिवेश में गुलाब सिंह लोधी का बचपन बीत रहा था। उस दौर के ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक सुविधाओं का घोर अभाव था। ब्रिटिश राज की नीतियां ग्रामीण शिक्षा के प्रति पूरी तरह उदासीन थीं। गुलाब सिंह लोधी ने अपने गांव के निकट स्थित प्राथमिक विद्यालय में अपनी आरंभिक शिक्षा ग्रहण की। हिंदी भाषा और स्थानीय बोलियों का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था उन्होंने, लेकिन वो औपचारिक उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। हालांकि औपचारिक डिग्री न होने के बावजूद उनके भीतर गजब की बौद्धिक तीक्ष्णता और सामाजिक राजनैतिक समझ थी। अंग्रेजों के अत्याचार और किसानों पर मंडराते आर्थिक संकट को वो बहुत गहराई से देख और समझ रहे थे। इसके साथ ही तत्कालीन समाचार पत्र पत्रिकाओं और लोक साहित्य के माध्यम से देश की राजनैतिक स्थिति और ब्रिटिश नीतियों के दुष्प्रभावों पर भी उनकी दृष्टि थी। समय आगे बढ़ा और गुलाब सिंह लोधी पिता के साथ खेत में काम करने लगे। खेती किसानी के दौरान उन्होंने बहुत करीब से देखा कि किस तरह ब्रिटिश हुकूमत के मातहत जमींदार और लगान वसूल करने वाले कारिंदे निर्धन किसानों का निर्दयतापूर्वक शोषण किया करते थे। इस प्रत्यक्ष अनुभव ने उनके भीतर ब्रिटिश राज के प्रति तीव्र असंतोष और विद्रोह की भावना को जन्म दिया। 1920 का दशक भारत के स्वाधीनता इतिहास में अत्यंत उथल पुथल भरा दौर था। एक तरफ महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन देशव्यापी लहर पैदा कर रहा था, तो दूसरी तरफ क्रांतिकारी धारा के युवा अपने रक्त से आजादी की इबारत लिख रहे थे। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट हुए ऐतिहासिक काकोरी कांड ने देश भर के साथ साथ पूरे अवध क्षेत्र के युवाओं में देशभक्ति की भावना जगा दी थी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद और ठाकुर रोशन सिंह जैसे क्रांतिकारियों की चर्चा देश भर में थी। वीर गुलाब सिंह लोधी के मन मस्तिष्क पर भी इस घटना ने अमिट छाप छोड़ी। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव गांव गांव तक पहुंच रहा था। लोग विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर रहे थे। चरखा और खादी स्वावलंबन का प्रतीक बन चुका था। वीर गुलाब सिंह लोधी समझ चुके थे कि इसी मार्ग पर चलते हुए गरीबों और किसानों का उत्थान संभव है, अंग्रेजी राज से मुक्ति संभव है।

इसी बीच साल आया सन 1935। भारत का स्वाधीनता संघर्ष लगातार जारी था और ब्रिटिश हुकूमत ने जन आंदोलनों को दबाने के लिए कठोर नियम लागू कर रखे थे। उस समय तक गुलाम भारत के मन में अपने राष्ट्र ध्वज की आकांक्षा आकार ले चुकी थी। ब्रिटिश राज के विरोध स्वरूप झंडा सत्याग्रह शुरू हो चुका था और अलग अलग अवसरों पर लोग राष्ट्र ध्वज फहराकर ब्रिटिश प्रशासन का विरोध कर रहे थे। अंग्रेजी हुकूमत ने सार्वजनिक स्थानों पर भारतीय झंडे को फहराने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी थी। झंडा फहराना राजद्रोह माना जाता था और ऐसा करने वालों को असहनीय यातनाएं और सजा दी जाती थी। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में भी स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने लखनऊ के मध्य स्थित अमीनाबाद पार्क में झंडा फहराकर झंडा सत्याग्रह करने का निर्णय लिया। 23 अगस्त 1935 का दिन तय हुआ। अंग्रेज सरकार को पहले ही सूचना मिल चुकी थी कि क्रांतिकारी अमीनाबाद पार्क में झंडा फहराने का प्रयास करेंगे, इसलिए सैकड़ों सशस्त्र पुलिस के सिपाही, पुलिस अधिकारी और घुड़सवार दस्तों ने पूरे पार्क को चारों ओर से घेर लिया। पार्क के सभी प्रवेश द्वार सील कर दिए गए। किसी भी नागरिक को पार्क के भीतर तो क्या, आसपास भी भटकने की इजाजत नहीं थी। पार्क के बाहर भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा था, लेकिन पुलिस के सख्त पहरे के कारण कोई भी भीतर नहीं जा पा रहा था। जब पार्क के बाहर जमा सत्याग्रही पुलिस के कड़े पहरे को देखकर असहाय महसूस कर रहे थे, तब वीर गुलाब सिंह लोधी ने हार नहीं मानी। वो पुलिस की नजरों से बचते हुए चुपचाप झाड़ियों और पेड़ों का सहारा लेते हुए आगे बढ़ने लगे। इस तरह पुलिस को चकमा देते हुए वो पार्क के भीतर दाखिल होने में सफल हो गए। पार्क के बीचों बीच एक विशाल और घना पेड़ था। वीर गुलाब सिंह लोधी बिजली की गति से उस पेड़ पर चढ़ गए। उन्होंने झंडे को बड़े जतन से छुपा रखा था। उनके पास बैलों को हांकने वाला एक डंडा भी था, जिसे पैना कहा जाता है। पुलिस बाहर भीड़ को रोकने में व्यस्त थी, जबकि गुलाब सिंह लोधी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर पहुंच चुके थे। पेड़ के शीर्ष पर पहुंचकर उन्होंने झंडा निकाला और पेड़ की शाखा पर झंडा फहरा दिया। हवा में लहराते झंडे को देखकर उन्होंने जोर से नारा लगाया, भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय, वंदे मातरम। पार्क के बाहर खड़े सत्याग्रहियों ने जब उनकी आवाज सुनी और हवा में लहराता झंडा देखा तो गगनभेदी जयकारों से आसमान गूंज उठा। ब्रिटिश अधिकारी बौखला गए। उन्होंने गोली चलाने का आदेश दे दिया। अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी गई। वीर गुलाब सिंह लोधी की बांह, सीने और पेट में कई गोलियां लगीं। वो झंडे को संभाले हुए पेड़ पर खड़े थे और अंततः मूर्छित होकर नीचे गिर पड़े। 23 अगस्त

अगस्त सन 1935 को मातृभूमि के लिए संघर्ष करते हुए भारत माता की गोद में ही वो बलिदान हो गए। आज वो पेड़ सत्याग्रह वृक्ष के नाम से जाना जाता है और अमीनाबाद पार्क का नाम झंडे वाला पार्क हो गया है, जो आज भी वीर गुलाब सिंह लोधी के बलिदान की गाथा सुनाता है। नमन ऐसे अमर बलिदानी को।